0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना रासनका गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।
3: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
4: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा, ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: समूह टीकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा, शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, टीकापुर 2, राजीपुर, कैलाली।
1: दमकल बिग्रेको सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढ़ी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टीकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ। टीकापुर नगरपालिका।
2: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
6: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे सुरु करल मनै घर सिजार सेकल।
7: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का?
6: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, कट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
8: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
0: हेलो बहिनी, कता हो? तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपैयाँमा एक पेटी रूपान 60 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कतिमा किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
0: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो? 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
5: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर, अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा टना भुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 24 र 31 शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला दस कटरास बाटी, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाड़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध, आफूलाई आवश्यक औषधि, खाद्यान्न, पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति, मूल्य सूची, लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं।
7: आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं।
6: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक, तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं।
7: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं।
6: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको, प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको, ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं।
7: अखाद्य रङ वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं।
6: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर, तौल, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं।
7: साथै उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौ।
6: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने, खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले खरिद गरेको सामानमा कुनै त्रुटि भए तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो।
7: खरिद गरेको माल सामान र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जीवधनमा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित विक्रेताबाट कानून मजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने उपभोक्ताको अधिकार हो।
6: उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आफू पनि सचेत बनाऊ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ।
7: कुनै वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ता हित विपरीतका अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए गरेको थाहा पाएमा तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, ओडा कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टीकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
6: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, टीकापुर नगरपालिका।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उग्रण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो माफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगरपालिका के पालिका स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक समीक्षा। 13 वर्ष के उमेर में घर छोड़ल जनक साउंड 25 वर्ष पाछे परिवार सहित घर फिर्ता परिवार में खुशियारी। नेपाली कांग्रेस की टिकापुर नगर सभापति में झपट बहादुर बुढ़ा निर्वाचित। आसम पानी पर्न संभावना काल से मौसम में सुधार ऐनाओ। आज से दशई के अग्रिम टिकट बुकिंग खुला रात के सेना यात्रु क्रन लाइन में। टीकापुर नगरपालिका के पालिका स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम हुईलबा। समीक्षा कार्यक्रम में पालिका अंतर्गत के अलग स्वास्थ्य संस्था में निजी अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत दात्री निकाय तथा संस्था के सहभागिता में कार्यक्रम हुईलखो। कार्यक्रम में स्वास्थ्य संस्थान के मूल्यांकन तथा सम्मान कार्यक्रम समेत करगिलवा। स्थानीय तह के आधारभूत क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र मापदंड 2082 के आधार में स्वास्थ्य सूचांक के समेत आधार में उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था के रूप में प्रथम मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, दूसरा स्थान में अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हो, तेसरा स्थान में सत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रलक बटागिलवा। कार्यक्रम में उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था के प्रमुख के रूप में धनसिंहपुर स्वास्थ्य संस्था के एम बहादुर सहाय सम्मान करगिलवा। सम्मानित हुईनामा उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी के रूप में नवराज जोशी, नर्सिंग वर्के शांता बराल, प्रयोगशाला और महेश चौधरी, वॉलेंटियर सेवा देती रलक अनमी गीता साउट, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका वार्ड नंबर 1 के नंद देवी दमाई नेपाली, कार्य सहयोगी बीर्ख रावल हे दोसल्ला प्रमाण पत्र सहित सम्मान करगिलवा। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला से उत्कृष्ट हुआ स्वास्थ्य संस्थान और सम्मानित व्यक्ति उग्रण बढ़ाई देती। आगामी दिन में सम्मान और प्रोत्साहन के काम है आर्थिक संगत जोड़ के काम करना बटोले बाट। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के उलट नारायण चापागाई से पालिका स्तरीय समीक्षा में टीकापुर उत्कृष्ट हुईटी ऐलक बटोईटी दात्री निकाय सहयोगी संस्था सकुजहान समेत समय डेलक में छलफल हुई सकारात्मक पक्ष रहल बटोले बाट। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल से जनप्रतिनिधि उक्रण के आगे कार्यकाल में स्वास्थ्य में मजा काम हुईल को अब के कार्यकाल में खासे कर नई सेक्लाक महसूस हुईल ओ समेत पहल पटक स्वास्थ्य कर्मी उक्रण सम्मान करल बटोले बाट। वहां आगामी योजना बनैना हो हाल के अवस्था था पैना समीक्षा कार्यक्रम से सहज हुईना बटवागिलवा। कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगारजी से स्वास्थ्य क्षेत्र में मजा काम करना हुईटी रलक बटोईटी और आगामी दिन में थप काम करना प्रयास करती रहना बटोले बाट। कार्यक्रम संचालन स्वास्थ्य शाखा के सह संयोजक कमल बहादुर रावल कर रहे। हाल देश में पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के साथ ही स्थानीय वायु के प्रभाव समेत रहल बा। आज देश में हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन बा। कोसी मधेश लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना तथा बाकी तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलना कहलबा। देश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्यांग सहित हावाहुदी और पथरा पानी सहित के मध्यम वर्षा सहित के हिमपात की संभावना रहलबा। मधेश प्रदेश कोसी और तकस और पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ स्थान बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग के साथ ही धेरी स्थान में मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना रहल। मौसमविद निष्ठा निरौला जानकारी दिल बाट। आसम पानी पर्न संभावना रहल से काल से मौसम सुधार हुई जैना देख परल बतागिल बा। मौसम के अवस्था हेरके केल धान कटना सकु जहन मौसमविद निष्ठा निरौला के किसान उक्रण आग्रह कर बाट। 13 वर्ष के उमेर में तत्कालीन नेकपा माओवादी मा जनमिलिशिया में हुके घर मन से निकलक असम के रामरोशन गांव पालिका छ परिवन भाटकटिया के जनक साउट 25 वर्ष पास टीकापुर लौटल बाट 2058 साल फागुन 1 गते आसाम के सदरमुकाम मंगलसेन में माओवादी के आक्रमण करना तैयारी करते रलक बेला जनक बेराम हुके घर आयल रहा माओवादी घरमा बैठना सरकारी पक्ष के निशानामा पर्न खतरा देखैटी गाउँले हुक्रा घर छोड्न आग्रह करल पाछे जनक गाउँ छोडल रहे। बुद्धिसे 600 रूपियाँ माग के पहिल समेत हातमा लेहला देखके डगरा हुइटी चिसे पानी कैलाली गैल जनक कुछ दिन पाछे जोशीपुर मनसे प्रहरीसे रगेडुवा पाइल ओ भक्ति भजनी हुइटी टिकुनिया जाके लखनऊ पुगलो समेत पेट पालक लग होटल लगायत के क्षेत्र में काम करती भारत के तमाम शहर में 25 वर्ष बिताएल बाट जनक भारत के लखनऊ पास आगरा दिल्ली मुंबई हरियाणा कुरुक्षेत्र अम्बाला हुईटी हिमाचल के शिमला में पुग के काम करलक अनुभव सुनाइल बाट घर आईलागे दुई पटक दग्रहमा उहरी समेत डगरामा घर जाम करल बटवाइल बाट पहिल पटक घर आई लागे हरिद्वारमा 4 लाख रूपियाँ लुटगिलो और वर्षा कमाके लौटना क्रममा चण्डीगढ़ बस अड्डामा 90,000 रूपियाँ लुटगिल जनक फ्रुटीमा विषालु पदार्थ खवाके बेहोस बनाइलो लुटल उसको पाछे स्याङ्जाके नेपाली परिवार बचाइलो 1 महिना पाछ होसमा आयल पाछे भोज गर्क घरजम करती समय बिताएल अनुभव सुनाइल बाट बेहोश रहलक बेला सहयोग करुया परिवार के छाई संग 5 जनक के भोजुलो जन्नी माया साउत बटवाइल बाट पहले दादकना माया बैठल पाछे दाई बाबा हुक्रन मनैना एकदम समय लागल जानकी के श्रीमती कहल बाट अस्तक अब तीन थो छावा हुसेकल रलसेफेन भारतमा समेत जन्नी सँगै घर बैठी उसक आप चाहिँ नागरिकता बनाई पर्न रलक ओर्से घर लौटल बटोली बाटै आप चाहिँ कबार खानामा काम गर्न जनक के जन्नी माया उह कम्पनी के समेत भान्से हुके काम गर्ती बाटै भूमिगत रहबेर आसाम कालीकोट क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र बनाके जनक भारत गैलको 7 वर्ष पाछे रोल्पा के संग्रह से नेपाल मा माओवादी के सत्ता मा समेत आयलो देश के नेता मंत्री समेत हुईलक और शांति हुईलक पटा पायल जानकारी करेल रह उसक जनक भारत मा बैठल पाछे वहां के परिवार एकदम दुख पायल बेहो जगत साउट के अनुभव बा जानकी के समेत दाई उसक जनक के दाई कलधारी साउट के समेत जन श्रीमान समेत हेरेलक 25 वर्ष पाछक समेत छावा आइबेर समेत 4 छावा देखके मनमा समेत खुशी लागलो हाल टिकापुर स्थित सुकुम्बासी शिविरमा बैठी रलक घर पुगल जनक से परिवारमा समेत खुशी छायलो अब उहाँ उक्रन के नागरिकता और छाई छावन के जन्मदर्ता आवश्यक रलक कोर्से भैया बहुरिया दीपा साउट बटोइलेबाट खोजखरमा एक घड़ी विश्राम पाछ फेर से भी सुन्थे रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि। स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टिकापुर। जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टिकापुर कैलाली।
5: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: नेपाली कंग्रेसकी नियमित महाधिवेशन पक्षधार हुँक्र टिकापुरकै नगर सभापतिमा झपट बहादुर बोडा निर्वाचित हुलबाटै विफेक दिनकै टिकापुरमा हुइलाक अधिवेशन मनसे बोडा निर्विरोध निर्वाचित हुइलके हुँ। सभापति लगायतकै सक्कु कार्य समिति निर्विरोध चयन हुइलक हो। उपसभापतिमा टीकाराम रेग्मी हो। गीता रावल चयन हुइलबाटै कलश्रे सचिवमा चन्द्रप्रकाश सोडाली हो। नन्दकृष्ण खनाल चयन हुइलके हो। असंकरकै सहसचिवमा मानवीर चौधरी सुमित रावल चयन हुइलबाटै कोषाध्यक्षमा सदस्य मनसे चयन गर्ना सदस्यके प्रत्येक वाडा मनसे एक एक जाने महिला सहितकै 3 जाने चयन गर्ना ओस्तहका करके 3 जाने जिल्ला सदस्यमा प्रेम बहादुर बिका लक्की शाह हेमन्त रावल चयन हुइलबाटै महाधिवेशनकै उद्घाटनमा नेपाली कंग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशके पूर्व मन्त्री तथा कंग्रेस नेता डाक्टर रणबहादुर रावल रहे। कार्यक्रममा बोल्टी डाक्टर रावलसे आफ्ना हुक्रा लोभ लालच छोड़के सत्यके पक्षमा छर्याल बटुलेबाट उहाँ नेतृत्व छिन्न बहानामा आफन संग्रह हुक्रन निष्ठा इमानदारीता सदाचारिता सेफे समेत दादागिरी देखेलको यी प्रवृत्तिके विरोधमा आफ्ना हुक्रा थरेलक बटोइलेबाट। कार्यक्रममा पूर्व सांसद गंगबहादुर कुमार संगठन बलगर बनैना बाटमा आफ्ना हुक्रा जिम्मेवार हुके लागे पर्दा बटोइलेबाट महाधिवेशन सदस्य नवराज रावल आप जनता हुक्रनके मन जित्नके साथै जनताकै आवश्यकता हे ध्यानमा धरके काम गरे पर्ना बटोइलेबाट। कार्यक्रममा कंग्रेस नेता प्राध्यापक डाक्टर जगत बहादुर सिंह रावल महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा टिकापुर नगर समिति वार्ड नम्बर 2 के वडाध्यक्ष दीपक चौधरी पूर्वा क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारी टिकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी केन्द्रीय शिक्षा विभाग के सदस्य तारामान रावल वाड़ा सभापति मध्ये समेत पूर्ण नायक महिला संघ कैलाली के अध्यक्ष निर्मला कड़ाइत दलित संघ के समेत केन्द्रीय सदस्य हर्क विश्वकर्मा उसका टिकापुर बहुमुखी कैंपस के सूबे सभापति किरण साउत लगायत से बोल रहे। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा राम बहादुर भंडारी से संचालन कर कार्यक्रम में स्वागत प्रदेश संयोजक मोतीराम भंडारी कर रहे। 15 महाधिवेशन अंतर्गत देउवा पक्ष ई बेला पालिका और क्षेत्रीय अधिवेशन कर सकल बा। दशैंमा घर जैना हुक्रन के लाख सरकार से आज से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करल बा। हाली पैना स्थानमा समेत आशय से युवा हुक्र गैल रात के से नै बस पार्कमा टिकट काउन्टरमा आगे लाइनमा बैठल बाट यातायात व्यवस्था विभाग नेपाल प्रहरी ओ यातायात व्यवसायी तथा मजदूर बीचमा यह असोज 20 गते से मंगलबार विभागमा बैठक बैठर से असोज 23 गते से दशैं के लाख अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न निर्णय गरेको हो। वह जिल्लामा यात्रुभर बाहेर से समय बिहीबार से नई रात से नई टिकट लेना लाइन में बैठलक बटागिल बा। नया बस पार्क में संचालन करते इलाक लोड से बहुदेश्य प्रणाली के महाप्रबंधक पंकज मल्ला के अनुसार सुदूरपश्चिम के जिल्लामा यात्रुङ्क्रा विफिक दिन रात के 9 बजे से नई टिकट काउन्टर आगे लाइन में बैठल बटवागिल बा दशैं के अग्रिम टिकट बुकिंग केलाक लोटसी बहुद्देश्य प्रणाली से नया बस पार्क क्षेत्र में 1500 काउन्टर थप करके आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएल जानकारी देहल बा।

0: हस्तान्तरण करलकै हो। कामकै सिलसिलामा रसुवा पुगलक, जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 जगतपुरके श्याम चौधरी हो। दिपेन चौधरी गैल भदौ 10 गते रसुवाके भोटेकोसीमा आयल बार पाछै सम्पर्क विहीन रहल बाटै। नियमनकारी निकायके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजार बनाइने उद्देश्य अनुरूप त त्यौहारमा बजार अनुगमन हे तीव्र पर्लक दावी करल रलसेफेन उपभोक्ता हुक्रा महसुस गर्न करके प्रभाव देखाइल नै हो। यी पालिफे बजारमा दैनिक उपभोग के पर्ना समेत चर्क मूल्यमा समेत कृत्रिम अभाव अखाद्य वस्तु के मिसावट जैसिन समस्या जस्तको अवस्थ रलक ओर्से सरकार अनुगमनमा छोट व्यवसाय हुक्रन केन्द्रित हुना करके मुख्य उत्पादक उद्योगमा नै पुग्लक प्रवृत्ति से सरकारी बजार अनुगमन के प्रभाव उपभोक्ता हुक्रन के से महसुस कर नै सकलक बटवा गेल बा। अनुगमन के अवस्था हेरबेर 10 वर्ष आगे कर्जिना बजार अनुगमन हो, अब कर्तिदारक बजार अनुगमनमा भिन्नता नै देख परल हो। वस्तु तथा सेवाके ढेर मूल्य लेना, नाप तौल ठगी करूया, गुणस्तरहीन म्याद गुजरलक सामान की बिक्री वितरण लगायतमा समस्या निरन्तर रहल बा। खोज खबरमा घरी विश्राम, विश्राम पाछ फेर सही विश्वन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छु।

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: विश्राम पछि फेरि स्वागत बा। नेपाली कंग्रेसकी 15 महाधिवेशन अन्तर्गत लौह कार्य समिति चयन केला आज मतदान हुति बा। विफेक दिन कर्जेना मतदान के तयारी नै पुग्ला कहती आज केलक सार्गिलक हो। निर्वाचन समिति के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का से केन्द्रीय कार्य समिति चयन केला आज दोपहर के से समेत मतदान शुरू होना जानकारी कराई गेल बा। लाभ निर्वाचित समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता निर्वाचन समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का से आवश्यक तैयारी सबको ओरैलको सांस मन से मतदान शुरू करबेर रात भर समेत मतदाता हुकन अप्ठ्यारो समेत पर्न रलक ओर से शुक्रवार बिहानी से काम आगे बढ़ैना निर्णय हुलक जनायल रहे। निर्वाचन समिति के सदस्य सचिव राजू कटवाल से समेत मीडिया ब्रीफिंग में समेत खराब मौसम व प्राविधिक कारण संगे ढिला मतदान शुरू करबेर रात के समय में मतदाता हुकरण कठिन हुई रलक ओर से शुक्रवार बिहान के 7 बजे से लेकिन मतदान करते रलक निर्णय में पुगल जानकारी देले बाटें।

नियमावली 2083 सहमति केलक शिक्षा मन्त्रालय से अर्थ मन्त्रालय में पठाइलवा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह के प्रथम श्रेणी शिक्षक हुक्रा 50 लाख सम और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक हुक्रा 40 लाख सम के सवारी साधन खरीद कर सेकना कहलवा स्तह के माध्यमिक द्वितीय श्रेणी स्तक निमावी प्राविधिक तह के समेत सक्कु श्रेणी शिक्षक हुक्रान 4 लाख सम के दुई पांग्रे सवारी साधन खरीद कर सेकना मेर के व्यवस्था प्रावधान कर गिलवा उसी के सवारी साधन खरीद के लाख बैंक मार्फत हुई वित्तीय व्यवस्था में समेत लागत रकम के 80% सम के समेत किस्तागत ब्याज नेपाल सरकार से सहुलियत रूप में बेहोर्ना व्यवस्था नियमावली में धरगिलवा शिक्षक उक्रा बाकी 20% रकम अपना व्यवस्था पन समेत करके सवारी साधन खरीद कर सकना कहलवा शिक्षक सेवा में बहाल रलक अवधि में संबंधित बैंक से निर्धारण करलक किस्ता गट समेत ब्याज सरकार से बिहोर्ना व्यवस्था समेत कर गिलक हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से टीकापुर नगर पालिका पालिका स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक समीक्षा 13 वर्ष के उमेर घर छोड़क जनक सावत 25 वर्ष पाछे परिवार सहित घर फिरता परिवार में खुशियाली नेपाली कांग्रेस टीकापुर नगर सभापति में झपत बहादुर बुढ़ा निर्वाचित आजसम पानी पर्न संभावना काल से मौसम में सुधार ऐन हो आज से दशैं के अग्रिम टिकट बुकिंग खुला रात से नई यात्रु पूरा लाइन में लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनकर विराम राम।

हो शिक्षकउपकरण सवारी साधन खरीदमा ब्याजमा सहुलियत देना व्यवस्था सहित के शिक्षा 11 औं संशोधन

0: आई बुढल्ला सुन रो कि नहीं वहाँ नंदी भुआ जा आगे ना अब समय एक ठो घर गहना नहीं हो बनेना उन्हें ना पट्टा नहीं पहना था
1: अरे गहना बनेना तो हो दुकान खोजती खोजती परेशान आतू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुम्हार बाटा स्तर तुम्हार रामपुरान दीदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुगर बना कर लाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाट वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर रेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672
6: स्वास्थ्यका लागि पानी

राम राम समुन्नत समाज के लघ समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफम 101 मेगा हर्ज फुल्क बैठल सकु रेडियो प्रेमी मैगर संगठन में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाह मई चांद मोरी गोल अपने हुकुम के संगे पुगे इत्यादि संग्रह रत्न जी अनलाइन में www.tikaprefm.org टीकाप्रेफम एप्स मार्फत हम पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकुजाने संगसंग यदि कार्यक्रम गोचानी हो हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे समय हम सकुजाने संगे रठी और संगे आज से हुई पुगलाटी लाइन खुला कर लाटी 091-5162-255 के डगर खुला बावे भावना रुचि सुनेना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत संग्रह बने ओ बनाई सकना कार्यक्रम गोचाली यानी कि अपन अपन रानी बानी संगे मेल खैना संगठन के संगे भावनात्मक संबंध जोड़ना चहिया संग्रह जो अपने हुए आई सकन अपने मई गर्ज अर्जी करना चाहम और संग्रह के अभी के समय में क्या करती है जे चटकार झटकार घाम के संग संगे अपने नेंगती घूमती बाटी फुर्सत के समय में बाटी अपन अपन काम धंधा में लागल बाटी की मजय हुई कुशल मंगल आराम हुई का नाम लाठ एक चुटी समय निकाल के होली से फिर साथ देख चाहिए ना भूले भी ये मई गर्जी करना चाहम अपने के संगे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक गीत से

हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी गलेसे सुन्टी बाटी समुन्नत समाजके लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्टी बाटी 101 मेगाहर्ज के तरंग मार्फत अपने रेडियो सेटसम्म मोबाइल सेटसम्म हाम्रे बाटी साथ रेडियो रत्ना जी मही चाँद के पार बिल्कुलै अनलाइन मेफे अपने एकदमै लग्यो सगे बाटी जौन ठाउँमे रेडियो नाइटी बठौ ठाउँ से फेर अपने अनलाइन मार्फत फे मनाइ सकी अब ठाउँ से अपन सहभागी फे जनाइ सकी अपने मई गर अर्जी गर्न चाहम अनलाइन में www.tikapurfm.org टिकापुर एफएम एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत फे संसार के कोई भी कोनुआ से अपने मनाइ सकी या वह ठाउँ से अपन सहभागी फे जनाइ सकी कन अपने मई गर अर्जी गर्न चाहम कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म अपने हुकुम के संगे हुई न करती आज फिर संग संग बाटी सको जाने बिल्कुल ही कुशल मंगल आराम हुई भी नंगती घूमती आती फुर्सत के समय में बाटी जहां जाऊं अवस्था में हुई भी रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज जरूर फिर सुनती हुई भी अनैती हुई भी और एक चोटी समय निकाल के लिए फिर साथ देख सा ही ना भूले भी इमै गर अर्जी गर्न चाहब सँगै दशैं फेक्टमै लगे आसेकल भयो है आज 5 गते काल 24-25 गते चाहिँ जेउन धर्ना दिन र दशैं जो एकदमै लगे आसेकल भयो दशैं के गाउँ घर सायद रौनक बढ्ती हुई वस्तै के किनमेल करेक पर्न जो अपने हुक्ते किनमेल करती हुई भी बजार फिर लमसम लमसम सायद भरी भराओ जस्तै हुइती हुइती भयो है अपन चाहना जरावर दशैंमै लावा लुग्र लगाइन जो एकदमै मनमै इच्छा रहत हो जरावर जो अपने होके जो हो करती हुई व्यवस्था के ढिग्री खाएक लग जो धान पाकल धान जो कटना शायद अपने होके शायद आटूर में हुई भी पानी फे लमसम लमसम बरसती रहल अवस्था अबावे ये मौसम फिर लगभग लगभग शायद साथ नहीं देती रहल अवस्था अबावे अब के समय में बिल्कुल घर से बाहर कमाई गैल संघरे होके चाहे घर ऐना जो अपने होके शायद टलखर में हुई ईटी हुई का ना हमन लागत बिल्कुल कुशल मंगल हुई भी एक छुट्टी समय निकाल के लिए सफे साथ देख सा ही ना भोले भी लाइन खोल लाई सुने 91 5 183 155 के दागर खोल लाई भावना रुचि सुने ना कार्यक्रम घोषाली अपने होकर इत्यादि अठे पर हम एक ठो गीत छोटी गीत के बाद हमने फिर सोयाबाटी लाइन खोल लाई

0: हजुर कार्यक्रममा फेर फेर स्वागत गर्न चाहब अपने हुन अनलाइन www.tikaparikshan.org हाम्रो पाटो नेपाली पाटो मार्फत संसारकै कोही भी कोनो सको जाने सँगसँगै आइपी 101 मेगा हर्जको तरङ्ग मार्फत अपने कुनको रेडियो सेटसम्म मोबाइल सेटसम्म कोहीसँग लाइनमै आफूको लागि संकेत मिल्न लगा छ कमसँग रहेछ बोलकारी उहाँ हजुर राम राम बर्दिया राजापुर से सुशांत चौधरी खबर कैसी बस सुशांत जी पानी पर के धान चाहिए सब ढला दहल अब कटले रही कि नहीं कटले रही
1: कटल नहीं रही
0: हजर
1: नहीं काटल
0: ये नहीं काटल हो नहीं काटल हो हवा पानी ज्यादा आके ढला दिले बाबू दसैँको पारे काट मिली कि
1: हजुर दादा
0: दसैँको पारे काटे मिली कि पानी नआएको ढिक्रीको खाधारी नै बिल्कुल सुशान्तजी धेरै खुसी लागल सुरु गरेछ थियो
1: आफ्नो छोट बहिनी माया गर्न आफ्नो भारी बहिनी आदर सम्मान गर्न लगभग फुटबल भलिबल खेल्न लगभग चार बार बिगार नै गर्न नभए मात्रै दूर
0: अपने के भावना और रुचि कोनो संग्रहण मन पर्थे संग्रह के रूप में अपने एकदम सहज से कैसी के भेटाई सके
1: अन्ठानब्बे चौध एकाउन्न एकाउन्न पचास अन्ठानब्बे चौध एकाउन्न एकाउन्न पचास राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन सुशान्त
0: हिँड आउट अर्थ गर्ने एकदमै सहज आफ्नो भेटाइ सक्दै
1: हजुर दादा
0: सम्झिसक्छु सँगै
1: टेक्निकल दिदी हो अनि दादा
0: एक्लै बिदा है
1: राम
0: राम सुशांत जी रहे बर्दिया राजापुर तीन के संगे रहे ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग वहाँ है यदि वहाँ के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहाँ संगे संगे बनना बनैना जो अपने लागत ही मन में गले से राजापुर नगर पालिका तीन सुशांत चौधरी अंठानब्बे चौदह एकाउन्न एकाउन्न पचासी नंबर में एकदम सहजे से पाई सकती और संग्रह के संग्रह बनैना बिल्कुल अपने के कर्वी कल से मिसकल चाहे बिल्कुल नाम देवी एक मिनट दुई मिनट होने से फिर बातें बटवा देवी या मैं फलाने फलाने ठाव से मैं अपने से संग्रह बनना चाहूँ कहीं अपने के मैसेज पे छोड़े सकती करना अपने मई घर अर्जी करना चाहूँ लाइन खुला भाई सुनी एकानब्बे पांच एक सठी दुई छह पचपन एक डागर खुला भाई चटकार झटकार घाम गौर ले भाव या बेकी समय में निंदी घूमती आती फुर्सत के समय में बाटी जहां दोनों समय भी रेडियो टीका पूरे एफएम 101 मेगा हर्ज जरूर फिर सुनते ही भी और नहीं टी ही भी या वह ठाव से अपन सहभागी फिर जाना है इससे भी करना अपने मई घर अर्जी करना चाहूँ लाइन खुला भाई अठे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद से हमने फिर से बाटी

हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाह पनि निर्धारित समय फेरको लागि नगरका टिलागल अवस्थामा हामीले आपुगला थि हता पटेल सम रेडियो के साथ देहरी रेडियो प्रेमी मैगर संगठन ढेर धन्यवाद सहभागी जनय संगठन ढेर धन्यवाद जस्तो कि सहभागी जनैन प्रयास कर दिलकने प्रयास कर रही संगठन फिर ढेर धन्यवाद दिन अपने फोन बिल्कुल सफल है असरली ये जानकारी करना चाहन मोरिक बोल अपने के रेडियो सेट समय पुगा दिले कुछ संघरिया रत्ना जी से ढेर धन्यवाद देहती एक मैगर गीत छोड़ती मई कार्यक्रम संचालक चांद के बाद एक हफ्ते के लग भी रहे तो अपने इनके पल सुबह रहे राम राम।

0: कबू का ती रही था कबू पेंसिले रही था कबू झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कतरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: खाने मन तो कहाँ छ तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फिर खानै पर्छ
4: तब एक्लो कहाँ सस्त्र यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाई पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
6: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
7: आरती ब्युटी एण्ड कस्मेटिकमा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्युटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ
8: सञ्चालक आरती चौधरी सम्पर्क नम्बर 98624 70483

0: पर्स हराएको सूचना टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर एक ब्लक नम्बर 14 बस्ने जितेन्द्र रावलको असोज 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 8 बजेभित्र हुलाकी राजमार्ग हुँदै लम्की खकरौला मेन रोडबाट धनगढ़ीदेखि टिकापुर आउने क्रममा फुलबारीदेखि टिकापुर ब्लक नम्बर 14 घर पुग्दासम्म पर्ससहित पर्समा भएको नेपाली र भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्र, कृषि विकास बैंकको एटीएम कार्ड र 1090 रूपियाँ सहित गोल्डेन कलरको पर्स हराएकोले भेटाउनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 98 12 69 25 57 97 0 39 40 350 खबर गरिदिनु हुन वा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएममा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै पर्स भेटाएर दिने व्यक्तिलाई पर्समा भएको पैसा र अन्य पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ।
1: मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ।
2: I love the scent.
1: I love it too. हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
2: मंगलदीप सेंट 3-in-1 perfume like fragrance.
3: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊँ। वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलते।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: पढ़ाई छुट्यो, साथी छुटे, सबै छुट्दै गयो, मेरो जीवन भविष्य त अन्धकार नै भयो, मनको पीडा

0: बुका पी रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था काकना हो काकना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी गलती भाई माफी पाऊ पहले भंचु सारी।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
2: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को धारा जरान का लागि आवेदन दिने बारे को सूचना टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था र टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित रामपुर खानेपानी एक आपसमा मर्ज भई खानेपानी सेवा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको हुँदा वार्ड नम्बर 3 का उपभोक्ता ज्यूहरूलाई विशेष सहुलियतमा धारा जडान गर्ने योजना रहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ उक्त सहुलियत कार्यक्रममा सहभागी हुन मिति 2083 असोज 1 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म संस्थाको कार्यालयमा धारा जडानका लागि आवेदन दिन हुन अनुरोध छ याद राख्नुहोला पुस 1 गतेपछि सहुलियत कार्यक्रम लागू हुने छैन थप जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर 0915614549 मा सम्पर्क गर्नुहोला टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था
0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604770 र मोबाइल नम्बर 9848558
0: घर त जेन्टेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
0: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
0: अब त म ढुक्क
6: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टीकापुर कैलाली

0: टीका प्रमा प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाँत खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
1: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846774417।
2: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टीकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब
3: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
2: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
3: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ।
4: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
2: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमराफारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
3: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848518828। आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछा से सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
6: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
3: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए था पाए।
0: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरास गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड्के तिलहरी बाला चूरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना राशन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25

0: गरौ भविष्यलाई अन्धकार हामीले नबनाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दी भुवा जागिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका अन्सेकले कत्रा सुघर बनाएका ल बाटी
1: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वात खाई आऊ जाएका हौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864 41208 ओ 9846 39261
2: जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलालीको 9 वार्षिक साधारण सभा हुने बारेको सूचना साना किसानका लागि लगानी ल्याउँछौ सुनौलो बिहानी आउँदै गरेको बडा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्बत एवं छठ पर्वको अवसरमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयरधनी शुभचिन्तक पत्रकार समाजसेवी एवं देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यही मिति 2083 साल कार्तिक 8 गते आइतबारका दिन टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहालमा हुन गइरहेको श्री जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 9 वार्षिक साधारण सभामा सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौं। स्थान टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहाल समय बिहान 10 बजेदेखि आयोजक जागरूक नागरिक कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार टीकापुर कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 0915606641 मोबाइल नम्बर 9842386713
3: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के उस्ता बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाक कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला जस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरे वरीपरी किन घुम्दै छौ छोरी
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि
3: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुमका छड़के तिलहरी बाला चूरा चंद्रमा जंतर चंद्रहार इंडियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना राशन का गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 98-688-14-799 98-24-60-25-32 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 98-24-67-28-25
6: दमकल बिग्रेको सूचना टिकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टिकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ टिकापुर नगरपालिका

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी ही।
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300।
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो? महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा।
1: अपनो कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे। संचालक शेरबहादुर थारू। संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 0 26।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपना कन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपना ओकरा बस सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन म www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्टी रहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जनजागृति मावि टीकापुर दुई सीतापुरमा इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति वितरण कक्षा 10-12 के 8 विद्यार्थीको न छात्रवृत्ति प्रदान मुक्त कमाया आधारभूत विद्यालय टीकापुर दुई विजयनगर के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई समन्वय के अभाव में धीर समस्या रहलक प्रदेश सरकार के मंत्री व स्थानीय तह के गुनासो व जनकल्याण ओ ओम कृष्ण बी सहुलियत सेवा समझौता जनजागृति मावि सीतापुर टीकापुर दुई सीतापुरमा इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम हिल्वा भट्टराईकी अमेरिकामा रहलक छावा परवीन भट्टराई व पटवैया पुनमाया व्यञ्जनकार भट्टराईकी सहयोग मन गैलक 5 वर्ष थेसे विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण हुइटी आइल्वा यही वर्ष कक्षा 10-4 व कक्षा 12-4 के 8 जना विद्यार्थी कन्ह वितरण कई गिल्वा यह चौके छात्रवृत्ति कक्षा 10 के विद्यार्थी लक्ष्मी चौधरी सानु भूल निधि शाही अमिषा चौधरी व कक्षा 12 के विद्यार्थी मीना परिया लक्ष्मण कुंवर निर्मला भाट रेणुका कुमारी टीखा तरी वितरण कई गिल्वा छात्रवृत्ति पैना विद्यार्थी हन 12 महीना के अभिभावक सहयोग शुल्क बराबर के रकम 2 ठान स्कूल पोशाक 1 जोड़ जुत्ता व स्टेशनरी सामान प्रदान करगिल्वा इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संस्थापक चन्द्र सिंह भट्टराई की अध्यक्षता महिला कार्यक्रम मन विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष माघुराम चौधरी छात्रवृत्ति पैलक भारे बाठुलक बटुटी लड़का प्रकन्ह अध्ययन मन ध्यान दिए आग्रह कलबाट छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में बोल्टी पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री समेत रहल हुईलक भट्टराई लड़का प्रका सपना ड्याखापना बटुटी सपना ड्याखल पाछा कलक पूरा हुईना बटुलाट वहां पढ़ाई में रूचि हुईलक विद्यार्थी विद्यालय नियमित ऐना आघ बरक लागि धीर जना के सहयोग जना हुलक वर्षे पढ़ाई में रूचि हुलक लड़का पर्क न हौसला मिलक एक छात्रवृत्ति देना करगिलक बटुलाट विद्यालय में न गैलक 5 वर्ष थेसे इन्दिरा चन्द्र छात्रवृत्ति वितरण हुईटी आइल्वा भट्टराई यह कार्यक्रम जनता मावि मुनुआ में समेट करना तैयारी कलक बटुलाट विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुक्ति प्रसाद भण्डारी बाल बालिका अध्ययन व शैक्षिक विकास मन छात्रवृत्ति सहयोग मिल्ती रलक बटुलाट कार्यक्रम में एसई 2082 मन टीकापुर के सामुदायिक विद्यालय में उत्कृष्ट नतीजा लान सफल हुईलक बटुटी शिक्षक हुकन समेत सम्मान करगिल्वा कार्यक्रम शिक्षक हिकमत बुढ़ा संचालन करल रह कार्यक्रम में व्यवस्थापन समिति सदस्य जगन्नाथ रिमाल समेत उपस्थिति रह मुक्त कमाया आधारभूत विद्यालय टीकापुर दुई विजयनगर के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई हुईल्वा सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम में सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करती शिक्षिका नैना चौधरी शैक्षिक सत्र 2082 मन शैक्षिक सत्र उपलब्धि 68.79% रहलक जानकारी करेलेबाट विद्यालय में 88 जना छात्रा व 69 जना छात्र कैखन जम्मा 119 जना विद्यार्थी रहलक वहां जानकारी करेलेबाट शैक्षिक सत्र 82 मन 227 दिन विद्यालय खुल्लक 211 दिन पढ़ाई हुईलक शैक्षिक सत्र के 35,77,247 रूपया के आईएबीएफए सार्वजनिक कई गिल्वा सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सुनल पाछ सहभागी हुक्र आपन आपन उहर्से सुझाव देलबाट टीकापुर नगरपालिका के शिक्षा समिति सदस्य तथा कालिका आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक जोगी रावल सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय के अवस्था सन्तोषजनक रहल सेफे कुछ बार सुधार करपना बटुलाबाट शिक्षक अभिभावक संघ के पूर्व अध्यक्ष हेमा चौधरी यहां के लड़का पर्कन के लागि यी विद्यालय भारे दुखसे स्थापना कलक स्मरण कटी आव विद्यालयके अभिभावक विद्यालयमा न्यायवेर धीर दुख लगलग बटुलबाट विद्यालयके संस्थापक व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष जित बहादुर चौधरी विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थिति कम हुना विषयमा अभिभावक शिक्षक ओ विद्यार्थी हन एक ठाउँमा नठैक छलफल करबेर कुछ सुधार हुना सुझाव देलबाट टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नरेश अवस्थी विद्यालयमा न विद्यार्थी पढ़ैना सेफे गुणस्तरमा वृद्धि गर सुझाव देलबाट अधिकृत अवस्थी विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थिति कम देखिलक वर्षे यी कार्यक्रममा अहिलक सुझावमा विद्यालय अनुसरण गर्दै अभिभावक से अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम गर सुझाव देलबाट शिक्षक अभिभावक संघकी अध्यक्ष सुमन चौधरीकी अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष आशा चौधरी विद्यालयकै विकासमा न सक्कु अभिभावक ध्यान दिएपना बटुलबाट कार्यक्रममा विद्यालयकै शिक्षक अनिता चौधरी ओ रेखा न्यौपानिया सम्मानकै गिल्बा कलसे विद्यालय प्रथम दिव्या चौधरी ओ अन्य कक्षामा प्रथम द्वितीय तृतीय हुना विद्यार्थी हुकन फे पुरस्कार प्रदान करगिल्बा शिक्षिका रूपा चौधरी से सञ्चालन करल हुल कार्यक्रम स्वागत विद्यालयकै प्रधान अध्यापक राजाराम ठकाल करल खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: दमकल बिग्रेको सूचना टीकापुर नगरपालिकाको दमकल बिग्रेर मर्मतको लागि धनगढ़ी लगिएको र मर्मत भएर नआउँदासम्म दमकलका सेवाहरू प्रदान गर्न टीकापुर नगरपालिका असक्षम रहेको सम्पूर्ण सेवाग्राहीमा जानकारी गराउँदछौ टीकापुर नगरपालिका
2: के तपाईलाई थाहा छ
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
2: हो र
3: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
2: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
2: के छ त विकल्प
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
2: विस्तारै गर्दा हुँदैन
3: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या
4: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नम्बर 9844273359 र 9848423359 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
6: आजभोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ
7: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
8: सुन्नुहोस् न यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे
9: ए हो र गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त
8: हुन्छ नि आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि
9: त्यसो भए आजै जाउँला नि
8: ल अरूलाई पनि भनौँ है।
9: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
9: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805443893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। तीन तह के सरकार बीच समन्वयकै अभावमा न आमिन धिउ समस्या समाधान हुई निसेकलक बटवागेल बा। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी आयोजनामा न शुक्रबार धनगढ़ीमा हुइलक स्थानीय तहके आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक प्रगति समीक्षा वो असल अभ्यास सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी हुँक्र असीन धारणा धरलक हुइट। कार्यक्रममा बोल्ती सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष शर्मा थापा, तीनौ तहके सरकारबीच समन्वय हुई निसेकलक बटुइटी, समन्वयमा न जनताके साझा समस्या समाधान हुइन वो विकास गति लेना बटुइलबाट, मन्त्री थापा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मजा सुधार गर्न स्थानीय तहसँग के प्रदेश सरकारके विशेष समन्वय हुन बटुइलबाट। कार्यक्रममा बोल्ती आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री खुशीराम डंगौरा थारू, फेर तीन तहके सरकारके प्राथमिकता सुशासन सहकार्य सह अस्तित्व हुइपनामा जोर देलबाट, संहिता कार्यान्वयनमा एन कानून र क्षेत्राधिकारके समस्या हुइल मन्त्री थारू कल, प्रहरी चौकी सीमा सुरक्षा पोस्टके अवस्था बेहालबा, प्रदेश सरकार बना दिहेबेर खर्च बजेट बेरुजु आइलबा, कैलालीके प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी, विकास निर्माण करबेर शान्ति सुरक्षा वो अपराध नियन्त्रणके विषय फे ख्याल करपना बटुइलबाट। कार्यक्रममा न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै राज्य मन्त्री जानकी देवी कुँवर, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय न जोड़ना कार्यक्रम से धुरी घटलक बटुइलबाट। वस्तक उद्योग पर्यटन वन वातावरण राज्य मन्त्री इन्दिरा गिरी, तीनौ तहके समन्वय कर्कन काम करलसे देश हली प्रगति लेना करना वो स्थानीय विशेषता अनुसार के विकास करपना वो विकास आयोजना संचालन करबे, प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण करलसे कलह डिगो विकास हुना बटुइलबाट। कार्यक्रममा स्थानीय तह आर्थिक वर्ष 2082-83 कलह काम के प्रगति विवरण सुनैती, असल कामके विवरण फे प्रस्तुत कैगिल्बा। कैलालीके 13 स्थानीय तह मध्ये लम्कीचुहा नगरपालिकाके प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी नै रहन कलसे धनगढ़ी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका तयारी नै पुग्लक बटुइटी प्रगति पेश गरल्नी हुइट। स्थानीय तह हुक्र वित्तीय सामान्यकरण अनुदान खर्दो क्रममा रहलक, संघीय सञ्चालनमा अहिलक योजना समयमा निबनलक, स्थानीय तह पठैलक संगठन सर्वेक्षण भू उपयोग योजना जसिन प्रदेश पास करपना विषय आघरनी बहरलक, पालिका पालिका बीच सीमा विवाद हुइलक, वन भित्तर के ताल हुकन के स्वामित्व के विषय प्रश्न हुइलक, प्रदेश व पालिका हुक्र बेरुजी बहर्ती गैलक लगायत के कैयौं समस्या रहलक बटुइलबाट। पालिका प्रमुख हुकन के उहरसे जानकी गाउँपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी, जनप्रतिनिधि व कर्मचारी मिलका आवश्यक काम करपना व हुइलक जनशक्ति प्राकृतिक स्रोत के सदुपयोग कति समृद्धि हासिल करपना बटुइलबाट। टिकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओम कृष्ण अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर प्रणालीबी स्वास्थ्य सेवा तथा सहुलियत सेवा प्रदान सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता हुइलबा। सम्झौतामा जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के उहर्से संस्था के अध्यक्ष निरपराज भण्डारी तथा अस्पताल के उहर्से अस्पताल के प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद उपाध्याय बसगई हस्ताक्षर कलबाट स्वस्थ सदस्य समृद्ध समुदायकना अभिप्रायकेसँग शुक्रबार एक कार्यक्रमके बीच ऊ सम्झौता पत्र मन औपचारिक हस्ताक्षर करकिलक हो। सम्झौताके सँग कैलालीके टिकापुर नगरपालिका, जानकी व जोशीपुर गाउँपालिका तथा भजनी नगरपालिका क्षेत्रके बसोबास गर्न सहकारीके 1400 बढ़ी शेर सदस्य तथा हुकहनके एका घरके आश्रित परिवार हुक्र प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुइना हुइलबाट। सम्झौता अनुसार सहकारी के सदस्य तथा उहाँ कहन के घर के परिवार ओम कृष्ण अस्पताल से सेवा लिहे न्यूनतम 10 थे से अधिकतम 20 प्रतिशत विशेष छूट प्राप्त करविया अस्पताल बिरामी भर्ना आईसीयू एनआईसीयू लगायत विभिन्न प्रकार के जटिल तथा सामान्य शल्यक्रिया ल्याब परीक्षण भिडियो एक्सरे एक्सरे तथा अस्पताल के अपना फार्मेसी से दवाई खरीद करबे टोगिलक सहूलियत छूट उपलब्ध करा जैनाबा ओस्तकन ओपीडी दर्ता तथा एमबीबीएस चिकित्सक परामर्श शुल्क अधिकतम 150 कलहक कायम कर गिल्बा कलसे नियमित फलोअप परामर्श पूर्ण रूपमा निशुल्क रहना व्यवस्था मिला गिल्बा यी सहुलियत सुविधा उपभोग करक लागि सेवा गराही अस्पताल के शुल्क भुक्तानी गर्न आग जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जारी कलक आधिकारिक शेयर सदस्य परिचय पत्र वा सम्बन्धित कार्यालय सिफारिश कलक पत्र पेश गर्न पर्नाबा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कल पाछ समझौता के पुनः कार्यान्वयन के प्रतिबद्धता व्यक्त करती अस्पताल के प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण प्रसाद उपाध्याय बजगई समुदाय में आधारित सहकारी के सदस्य उंकन सहुलियत दर में गुणस्तर सेवा देना दिहे पाइबेर खुशी व्यक्त करती पूर्व कैलाली के अत्याधुनिक प्रविधि उपकरण व विशेषज्ञ चिकित्सक हुकन के प्रत्यक्ष निगरानी मन स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कर तिरलक अस्पताल से सदस्य हुकर वास्तविक राहत महसूस करना विश्वास व्यक्त कलबाट सहकारी संस्था के व्यवस्थापक छपीलाल जीसी अपन सदस्य हुकन वित्तीय कारोबार के अलावा सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवा मन समेत प्रत्यक्ष सेवा पुग्ने उद्देश्य लेखन अस्पताल से सहकारी करगिलक बटोटी समझौता से प्राप्त हुईना स्वास्थ्य सहूलियत के भरपूर लाभ उठाई सकुश सदस्य तथा हुकन के परिवार हुकन आग्रह कलबाट समझौता अनुसार दुई संस्था के संयुक्त पहल मन समुदाय स्तर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर मातृ शिशु कल्याण तथा विभिन्न स्वास्थ्य जनचेतना सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत संचालन करना हुईबा खोज खबर में फेरफे विश्राम विश्राम बाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
10: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
11: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
10: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
11: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
10: अब त म ढुक्क
12: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
11: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
13: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
14: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
13: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
14: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
13: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772
0: खोज खबरमा फेरफे स्वागत बा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै बजेट विवादमा सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश दिह अस्वीकार कलबा अदालतकै यी निर्णयकेसँग प्रदेश सरकार लौ बजेट लन्ना डगर खुलल बा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश द्वै सपना प्रधान मल्ल व बालकृष्ण ढकालकै संयुक्त इजलासले अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय डायर कलक उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमन अन्तरिम आदेश जारी करपना अवस्था निदेकिलक ठहर कर्गिलक हो। तत्कालीन सरकार चालू आर्थिक वर्ष के लागि असार एक गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत कलक बजेट पारित हुई स्याकल्नी हो। वाकर पाछ सरकार परिवर्तन हुइलसे फे लवो बजेट लड्ना प्रक्रिया फे आग बढ़ स्याकल्नी हो। प्रदेशसभामा प्रस्तुत हो सेकलक बजेट सरकार पुनरावलोकन परिमार्जन वा पुनर्लेखन कर पैना निपैना विषय रिटमन कानूनी प्रश्न के रूपमा उठाकिल रह। अदालत अन्तरिम आदेश जारी निकरल पाछ प्रदेश सरकार बजेट लड्ना प्रक्रियामा आग बढ़ सहज हुइल्बा। सरकार तत्कालीन सरकार लनलक बजेट पुनर्लेखन कर्क लौ बजेट सार्वजनिक गर्न तयारी कर्ती रहल्बा। बजेट सार्वजनिक गर काल प्रदेश सभा बैठक बोलागिल्बा। प्रदेश सरकार अध्यादेश मार्फत बजेट लन्ना विषयमा फेर छलफल हुइल रह। नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएल के तेस्रो सीजन के लागि सुदूरपश्चिम रोयल्स आयोजना कलक ट्यालेन्ट हटसे बायाँ हाट मध्यम गति के बलर टेकराज थनाल हन आइकोनिक खेलाड़ी के रूपमा छनौट कलबा। सुदूरपश्चिम के विभिन्न जिल्ला मन आयोजना करगिलक ट्यालेन्ट हट मार्फत स्थानीय स्तरमा रहलक क्रिकेट प्रतिभा के खोजी कैगिल रह। ट्यालेन्ट हट मन दार्चुला बैटडी बझाङ डोटी डडेलधुरा अछाम बाजुरा कैलाली और कञ्चनपुर के खेलाड़ी हुकन हन समेत गिल रह। 14 असोजमा बैटडी के दिला सैनी मन दार्चुला और बैटडी के खेलाड़ी हुक्र शुरू हुईलक ट्यालेन्ट हट 15 असोज मन बझाङ 16 असोज मन डोटी ओ ददेलुरा तथा 17 असोजमा अछाम बाजुरा पुगल रह। 19 असोजमा धनगरीमा कैलाली ओ कञ्चनपुर के खेलाड़ी के ट्यालेन्ट हटलाइन कैगिल रह। ट्यालेन्ट हट के अन्तिम

0: क्षेत्र समय आधारभूत विद्यालय टीकापुर दुई विजयनगर के सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम समन्वयकै अभावमा धीर समस्या रहलक प्रदेश सरकारकै मन्त्री वा स्थानीय तहकै गुनासो ओ जनकल्याण ओम कृष्ण बीच सहुलियत सेवा सम्झौता लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार छ बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सिकबीर आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देते मैं गीता के विद्यार्थी सामुदायिक रेडियो टीका परीक्षण सुनती रवि राम राम
1: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुटे।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: आइ हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेकल?
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुवा बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
4: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो, जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
4: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
4: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 0915604070 र मोबाइल नम्बर 9848557818।
7: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाय।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सिक्ल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
3: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423959

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटाका आज इठा का कना हो बाबा फिर वस्तो बाटिन गतिलो ठाव से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: coffee ready.
1: Wow, thank you. You sound like अच्छे से वंदित बनाऊं मंगलदीप सेंट 3-in-1 के साथ.
0: I love the scent.
1: I love it too. हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ.
0: मंगलदीप सेंट 3-in-1 perfume like fragrance.